0: कला रखनी के पाशा जी महारावा
1: जी गुरु कृप निवास यंत्र जामी सच्चे पातशाह जी महाराज आप जी दे पावन स्थान तकत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे पावन स्थान दियां हाजरियां भरदे होए गुरु कियां संगतां वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार कीर्तन वजों बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह सतगुरु आप जी नाम जानी जानो सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता नाम दिया दाता हर मैदान हर कार जप तेर करना सतगुरु जी कारज राज करनी यात्रा सफल

सर्व नाम कथ कवन कर्म नाम वर्णत सुमत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बिनंतिया तेस मो

ज्ञान के विहीन छिन्न कैसे कह तरत है। भूत बन जारी चित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। दृण के भछैया धन लोभ के तजैया दित गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बकला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी पै बखानी नाहे असना प्रपंच मान भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उड़ैया सोच रैया कै बखानी है। फल के बसैया ताहे बांदरी के जैया कहे आद सफिरैया तै तभूत कै पछानी है। जल के तरैया को गंगी ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम मानिए। सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई दे चंद्रमा सिवैया को।

विश्वपाल जगत काल दीन दयाल पैरी साल सदा प्रतपाल जब जाल ते रहत है। जोगी जटाधारी सत्य सच बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास।

नाचत फिरत मोर बांदर करत घोर दामनी अनेक भाव करि करत है। चंद्रमा ते शीतल न सूरज ते तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारी सनद कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल वास के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है।

दूर ते अनेक दूर पूरत है, दूर के कनु का फिर दूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद दे तरंग कोट उपजत है, पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए, ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। कित कछ मछ कित उनको करत वश कित अच वच हो सब।

तेज तेज लीन ताही ते उपज सब ताही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है कित गंग बासी कित मदीना मकानी वासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करबत सहत कित भूम गड़त कित सुवा पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के बिन जग जारी मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानव बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जाप सी घास हारे चंदन लगाए हारे चो आचार पूज हारे बाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली बारे वितन लगाए हारे छापसी गाए हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपंत हारे तापसी।

ननेहंगेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्र सभूते भविखे भवाने अचित्रे नारायं नरंगं नरूपं नरेकं नलोभं नचोभंग भूतंग अभेखं न सत्रं न मित्रं ननेहं नगेहं सदेवं सदा सर्प सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं गजो नियच्छयाद अद्वयजोहं न जन्मं न मरणं न पर्णं न व्याधं न रोगं।

सुखं कहूं औखदि रोग के सो को सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जा छकंद्रव के नर कहानी कहूं राजसी सात की तामसी हो कहूं जोग विद्या धरे तापसी हो कहूं रोग रहता कहूं जोग जुगतं कहूं भूम की भुगत मैं भरम भुगतं कहूं देव कन्या कहूं दानवी हो कहूं जाच विद्या धरे मानवी हो कहूं राजसी हो कहूं राज कन्या कहूं सृष्ट की पृष्ठ की दृष्ट पन्या कहूं वेद विद्या कहूं व्योम वाणी कहूं गोग की गाव कथा कहानी कहूं अद्र सारंग कहूं पत्र रूपं कहूं मद्र वाणी कहूं क्षुद्र स्वरूपं कहूं वेद विद्या कहूं काव रूपं कहूं चेष्टा चार चित्रं स्वरूपं कहूं परम पुराण को पार पावे कहूं बैठ कुरान।

साजन कहूं राजरीतं कहूं पूर्ण प्रज्ञा कहूं परम प्रीतं कहूं अरबी तोर की पारसी हो कहूं पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूं देश भाख्या कहूं देववाणी कहूं राज विद्या कहूं राजधानी कहूं मंत्र विद्या कहूं तंत्र सारंग कहूं जंत्र रीतं कहूं शास्त्र धारंग कहूं होम पूजा कहूं देव अर्चा कहूं पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूं बीन विद्या कहूं गान कीर्तन कहूं मले जवाख्या कहूं वेद रीतं कहूं नृत्य विद्या कहूं नाग बानी कहूं गारडू गूढ़ कथा कहानी कहूं अक्षरा पक्षरा पक्षरा हो कहूं वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूं छल छाला धरे छत्रधारी कहूं राज साजंग धीरा।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अक्षय स्वरूप नाश अंतुट तेज अनकुट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंश जगात करता सती बहरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय शत्रु मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं मित्र मात जय करम वरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं व्योतबान जय जात पात नहीं शत्रु मित्र जय ने

कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम गई यज्ञ होत्र कई देव करम गई करत पीर विद्या विचार नहीं तदपता सपायत न पार कहू राज रीत कहू जोग धरम कई सिमृत सात सो करम न्यौली याद करम कहू हस्त दान कहू अश्वमेध मुख को बखान कहूं गर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूं जो करीत कहूं वृद्ध चार कहूं गर्त जक्ष गंधर्व गान कहूं धूप दीप कहूं अर्घ दान कहूं पितृ कर्म कहूं वेद रीत कहूं नृत्य नाच कहूं गान गीत कहूं गर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक पग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जन निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदपतास पायत न अंत कई कर्त कूट विद्या विचार नहीं तदप दृश्य देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु करत हो मर जग

सुखंजे ताप न साप न शोक सुखंजे रोग न शोक न भोग भयंजे खेद न भेद न छेद छयं जय जात न पात न मात पितंजे रचयं छत्री छत्रशितंजे राग न रेख न रोग भणंजे द्वैख न दाग न दोख गणं जय अंड ते ब्रह्मंड रचयो दस चार करी नवखंड सचयो रज तामस तेज तेज गियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रूपिंद नगिंद नगंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव वेव नरंग नर पाल रिपाल करार त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उद भुजंग किये देव देव सरात पितंगन खंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभ जात न पात न ज्योत जुतंग जय दात न मात न भ्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुवंग जय जंप है किन्नर जच्छ जुवंग नर नार नपुंसक जाहे किए गण किन्नर जाच भुजंग दिए गज बाजर था दिग पांत गणंग भूत भविक भवान तुवंग जय अंडज सेतज जेर रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली वो मेरा आकाश निवास छितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी सह दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई

नाद गतंगन खेद अभेद छेद नरंजे चार चतुर्दिश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जे शोक न भोग न जोग जुगंग वो भंजर गंजन आदि सरंग जे बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जांग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभान गंज वृतंग जे पार न पावत पूर मतंग अनखंड स्वरूप दंड प्रभा जय जंपद वेद पुराण सभा जय वेद कते अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेब जपै सत सिंध दो मुखताप तपै कई गलपन लो तब ताप करै नहि नैक कृपा निध पान परै जय फूकट धर्म सभै तज है एक चित्त कृपा निध को जपै देव या भव सागर को दर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति इम वेद उचारत सार सुति जो वारस के जस के रस है।

है, समस्त सिद्ध वृद्धता सदैव सर्वसात है, अनाथ नाथ नाथ है, अभंज भंज है, सदा गंज गंज गंज है, सदैव सिद्ध वृद्धता, अनूप रूप स्वरूप है, अचिज तेजमानी है, सदैव सिद्ध शुद्धता, प्रताप पत्र जानी है, नराग रंग रूप है, नरोग राग रेग है, अधोगता गदक है, अभूत ब्रह्म भेग है, न तात्मात जात है, न पाद चिहन वर्ण है, अदेक से गवेग है, सदीव विश्ववर्ण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्ववर्ण है, जिमी जमान के विग सदीव करम भरम है, अद्वेग है, अभेग है, अलेख नाथ जानी है, सदीव सर्वठोर में विशेक आन मानी है, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नीत नीत कह बतावई, न कर्म में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आद देव है कहो सु कैस पाइये, जिमी जमान के भी समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाढ़।

रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संक है न जज है न गंधर्व।

अकाल है, अपाल है, ख्याल है, अखंड है, न रोग है, न शोक है, न भेद है, न भंड है, न अंग है, न रंग है, न संग है, न सात है, प्रिया है, पवित्र है, पुनि

रूप राग नरेग रंग न जन्म मरण बीन आदना तकाद पुरख सो धर्म करम प्रवीन जंत्र मंत्र तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त गेट बिकैब सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मात न मित्र सर्व ठौर बिखे रमे उजे।

0: सनक औजन के सनंदन पावही नासे जछ किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सकरौ मुख चार सर्व सबद पतार के तर जाप ही जय जाप आद देव गाद तेजा नाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न आवे कर तंत्र मंत्र न कीन
1: जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब जब

पूर्व बताओ का गुरु को मोर सर्व बताओ का गुरु जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो जो ज

सुरहा हर जिन के वड भाग वडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले त्रिपता सह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आई धृग जीवै धृग जीवास जिन हर जिन सतगुर संगत पाई तिन धर्मस्तक लखिया लखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जिन नानक नाम प्रगास राग गुजरी महला पंजवा काहे रे मंचित वह उदम जा आहिर हर जियो परिया सैल पत्थर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहा जन पिता लोक सुतबंता कोय न किसके धरिया सिर सिर रजक संबाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया उडे उड आवे सह कोसा तिस पाछे बचरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

चौपई सम सतरै सैस भणी जय अर्ध सैस भुन तीन कहे जय भादव सुधि अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधा।

मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आय वसिया जन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत घर सुभाग घर सुभाग शब्द वाजे कलाजित कर धारिया पंच धूत दवस कीते काल कंटक मारिया धुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन भये।

देख ते को फतेह नुसरत बेदरंग आपता जब आज नानक गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल रूदे सहाय दरबार मित्र दरबारा सच खंड वसे निरंकारा लक्ष्मी खड़े तुमरे दरबारा सब देवते कर नमस्कारा दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर आता जग मग

0: तुमरी शरण तुम्हारी आस, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखण हार दयाला नानक
1: करके गोले
0: करके। महाराज अपना बना के रखे। इतिहास दे विच एक जिक्र आउंदा है, सरहंद दी धरती ते रहण वाला एक नौजवान लड़का भाई पहला सुनियारे सिखां दा लड़का है। इहदे पिता जी गहने बनाउण दा कम करदे। समा आया भाई पहले दे पिता जी बहुत बीमार रहन लग गए, बड़ा इलाज करवाया। बीमारी सी जेड़ी दिनों दिन वधदी गई, पर कोई फर्क ना पवे, पैसा बड़ा लगी जांदा। वैदा हकीमां दी समझ विच नहीं आउंदा वी बीमारी की है, की इलाज करिए। पर जिवें किसे नूं लगदा उवें दवाई दे जांदा, पर फर्क कोई नहीं पैंदा। जिदां गुरु साहब जी दा वचन है ना, महाराज कहिंदे वैदा संधा संग इकट्ठा होया,

के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पशांत। महाराज कहते भाई पहलिया सच बोलदा झूठ ते नहीं बोलता, जिन्निया मोहरां तेनू दे के आउंदा भाई उहदे सिउनिया मोहरां दे गहने बनाउणा। भाई पहला कहिंदा हां महाराज मैं झूठ क्यों बोलांगा, मैं सच बोलदा, जिन्निया मोहरां उहदे सिउ दे के आउंदे ने उन्निया मोहरां दे मैं गहने बना दिंदा। कहिंदे उहदे सिउ हुण किन्नियां मोहरां दे के आंदियां सी, कहिंदे महाराज 20 मोहरां दे के आया सी। कहिंदे गहने तोलो, जदों गहने तोले गए ते गहने 17 मोहरां दे भार दे हो, 17 मोहरां दे गहने। महाराज कहिंदे भाई पहलिया दित्तियां तैनूं 20 मोहरां सन ते गहने 17 मोहरां दे ने, तीन मोहरां कित्थे गईआं? आखो सतनाम, तीन मोहरां किधर गईआं? हुण जदों साध संगत जी पाज उदड गया, गुरु साहब चित कुछ छुपिया सी, लत्तां कंबण लग गईं, त्रेलियां आ गईं, ते फिर होर ते कोई गल नहीं आउणी, कोई जवाब ना आउणिया। भज के आया भाई पहला ते सतगुरु जी दे चरण फड़ लए, सतगुरु जी दे चरणां च टह पिया। महाराज मैं लालच विच आ गया, पहला एक मोर रखदा सी, लालच वध गया।

0: फिर दो मोरां रखण लग गया, लालच वध गया महाराज, हुण तिन रखणियां शुरू कर दी। मोरां जे वी दे के आए सी ना ते तिन मोरां मैं रख लिया सारी रख लिया सारी। महाराज कहिंदे भाई पहले आ जिदण तू आया सी तेनूं पुछिया सी तेरे विच की गुण, तू आखिया जी मैं गहने बना ले। जिथे तेरा गुण पुछया उथे तेनूं इह वी पुछया सी वी तेरे विच कोई ऐब ते नहीं है, ऐब ते नहीं है। उदण तू कहिंदा सी वी मेरे विच कोई ऐब नहीं। तीन वारी तेनूं पुछया, तू तिन्ने वारी आखिया जी कोई ऐब नहीं है। जे तेरे विच कोई ऐब नहीं सी ते आ फिर चोरी दा ऐब कित्थों आ गया? आखो
1: सतनाम,
0: चोरी दा ऐब कित्थों आ गया? महाराज लालच ने मेरियां अखां ते पट्टी बन दित्ती, महाराज लालच ने मेरी मत ते पर्दा पा दित्ता।

आवे आस कर जाए निराश कित, फल फिके फूल बक बके कामने आवे पत, मिटत नीवी नानका गुण जिए तत, सबको नीवे आप